0: அக்கு அக்கு அக்கு கிதே தண்டு நிதலாயி கதல் கிதே ஆஜ்கால ஹர் எக் ராத்தி தும் கெத்தாழோ ஐகதா கதல் கைசர் பவுலி ஹாவேன் துக்கா தோடே இஷாரே தில்லே துக்கா ஜாகேசோ வாண்டோ மெல்தா முன்சர் பிஸ்னஸ் கொரூக் ஆனி பொய்சே கொரூ ஜாவுச்சே நா முன் கிதே தரி ஹாவும் துஜோ சேஜாரினே கால் துவே வாண்டோ இசாரலோய் தும் கீ தில்லி फिर एरिन वांटो दिता मलोगी
1: ना बिल्कुल दिवसो ना मनालो
0: किते ना बिल्कुल दिन ना मनालोगी मम्मा किते मनाली
1: ती थोड़ा संगते ने राज जाऊंचा बरे दिसता हम सर ना का मनाली
0: हा वंदु कुरी हल्ल के बित्तो
1: किते
0: काय ना पक्को कलचे ट्रायल मात्र आनी की बाकी आसा हांवें जायते इशारे तयार केल्यात तुका एक एक स दिता
1: तुज्या तकल्यान कितें बरो सोलता गे
0: सांगता आयक ये सांगता बस बस बसू

0: அவன் ஆசு அம்சா பிரகோஸ் விகாராக்கு கிட்ட கரா போயலாம்னோ தும்கு ஆஜ் ஆப்சாலாம் தான் குரோ மக்கா தொடை சுங்தி தஞ்சலகி சங்கம் க சாத்து தேக்குனோ அவன்ஸ் தங்க கரா போயிலே அணி தியோ சுங்தி ஜைத்தோ தேம்பு முஜா மூத்தியந்தோரும் செங் கிறிஸ்த் அணி ஐசோவோ தீசு தேவானன்ஸ் நீர் மிலாமுன் நாம் பத்தியத்தான்
1: கிட்லே தீஸ் மோன் சொஸ்டேன் ஃபாதர் ஆஸ்கால் आमच्या पुताच्यो दोशी सड जाल्यात तो ताच्या स्वंत बुदीन करता गी वा कोणाच्या शिकण्यानी करता गी कळीत ना
2: वही रे प्रकाश जे कितें हांव आयकता ते सदगी तांकां तूं उलयताय म्हज्या मुखार कित्याक उलयनाय हांव वय बापी म्हळ्यार ससार गी हा பென்னாம் கிட்ட அங்க
0: பென்னாமாக்கு அவன் சா போயலாம் ஃபாதர் தாஜா அம்மோத்தின் தொட துபாவ சாத்து தே பரிஹார் கரியாமனன் பென்னாமா துக்கு அவன் ஆதி தாவுனோ மொரியா தியூனு சுலோஞ்சேன் அணி ஆத்தாயி துக்காவும் மொரியா தியூனு சுலைத்தா தரிப்போனோ முஜர் துக்கா கிட்டாக்கு ராக அணி ஹாகே முன்னோ மகா கழானா
3: நான் பிரமா तुझ्या वयर म्हाका कसले राग रे हागे तशें कांय ना बाबा
0: हांवें इंत्रामा कडेन जागो बांदिल्लो आनी ह्या जाग्या वयर तुका दिश्ट आसली आनी आजून ते तुज्या मोतींत आसा वय मू बेन्नामा
2: कितें रामा ताका कारण कितें जावं
0: ताका कारण आसा फादर मुळांत हो जागो बेन्नामाच्या बापाय सोसो बेन्नामाच्या बापायक त्या काळार कठीण कश्ट आनी आखांत आसल्या कारणान ताणें ताचो जागो इंत्रामा आयकलो त्या दळावो ल्हान भुरगो आतां आनकूल जाला जावं पुरो ताच्या उपरांत इंत्रामान जागो इकता म्हूण खबर जाताना ह्या जाग्याक पयलें मोल बांदिल्लें बेन्नामानच पूण इंत्राम बेन्नामाक जागो दिना म्हणलो आनी हांवें ह्या जाग्याक इल्लें चड इतमोल बांदून हो जागो हांवें खाण गेलो आनी ते दळा बेन्नामान म्हजे कडेन विनंती केली हो जागो म्हाका जाय म्हणून कित्याक म्हळ्यार हो ताच्या घराच्या कुशीचो जागो पूण हांवें म्हज्या गरजे खातीर ताका दिवंक जायना म्हणलें आनी ते दळा तो आमच्या लागीं झगड्याक लावलो आनी ते दळा इंत्राम म्हजे ताय आनी ताजे ते इल्ली गडबड जाल्ली सत आनी तशें बेन्नामाक ह्या जाग्याचेर हट पडला फादर
3: फादर जागो म्हणटना आशा आनी आपलेचिल्ली साज आसने
2: साईबा सहज जावन तुवें सांगचें सत पूण आमचे भितर एक मनशा गूण आसा जंय ताका मनशपण म्हणटात त्या मनशपणा भितर कसलीच आशा वा आपलेच रावना
3: म्हाका बक्षिया फादर
2: तुका बक्षणें हांवें दिवी येता पूण तुका बक्षणें दिवंक जाय पिरेरीन तुमी शेजारी एकामेकाक गरजेक अंदात तुमी पावचे
0: म्हाका ह्या जाग्या वयर बिलकूल आशा ना हांवें आशेन हो जागो खाण गेल्लो न्ही एका अनिवार्य कारणा खातीर फादर म्हाका आतां सोडून 60 वर्सां प्राय जल्मोन 35 वर्सां मेर हांव गटार सुजी येयल्लो कागार जावन 7 वर्सां जाल्यार आमकां भुरगीं जावनात एक दीस सकाळीं मिसावच्या वाटेर देग्याच्या झाडा मोल्यांत भुरगे रोडसो आवाज हांव वचून पळयतां एक 7-8 दिसाचें भुरगें रडतालें तक्षण हांवें त्या भुरग्याक म्हज्या पासल्यान घेतलें आनी फाटीं घरा जावन आयलो आनी सुशिला कडेन सुशिला देवाळावच्या वाटेर देवान आमकां भुरगें दिलां स्विकार करी आंगे म्हणटना सुशिलान आपल्या दोळ्यांत दुकां बरोवन जायत म्हळें आनी तो भुरगो होस प्रकाश आमचो एकलोच पूत

0: அவன் ஆசு அம்சா பிரகஸ் விகாராக்கு கிட்ட கரா போயலாம்னோ தும்கு அவச்ச அப்சாலாம் தான் குரோ மக்கா தொடை சங்கி தஞ்சலகி சங்கங்க சாத்து தேக்கணும் அவன்சு தங்க கரா போயிலே அணி தியோ சங்கி ஜைத்தோ தேம்பு முஜா மூத்தின் தோறும் செங் கிறிஸ்து அணி ஐசோவோ தீசு தேவானன்சு நீர் மிலாமுன் நான் பத்தியத்தான்
1: கிட்லே தீஸ் முன் சொஸ்டேன் ஃபாதர் ஆஸ்கால் आमच्या पुताच्यो दोशी सड जाल्यात तो ताच्या स्वंत बुदीन करता गी वा कोणाच्या शिकणांनी करता गी कळीत ना
2: वैर प्रकाश जे कितें हांव आयकता ते सदगी तांकां तूं उलयताय म्हज्या मुखार कित्याक उलयनाय आवय बापी म्हळ्यार ससार गी हा பெண்ணாம் கிட்ட அங்க
0: பெண்ணாமாக்கு அவன் சா போயலாம் ஃபாதர் தாஜா மூத்தின் தொடை துபாவா சாத்து தே பரிஹார் கரியாமனு பெண்ணாமா துக்கு அவன் ஆதி தாவுனும் மொரியா திவுனு சுலோஞ்சேன் அணி ஆத்தாய் துக்காவும் மொரியா திவுனு சுலைத்தான் தரிப்பூர்ண முஜர் துக்கா கிட்டாக்கு ராக அணி ஹகே முன்னும் மக்கா கடனா
3: நான் பிரேரம்மா तुझ्या वयर म्हाका कसले राग रे हागे तशें कांय ना बाबा
0: हांवें इंत्रामा कडेन जागो काणिल्लो आनी ह्या जाग्या वयर तुका दिश्ट आसली आनी आजून ते तुज्या मोतींत आसा वय मू बेन्नामा
2: रामा ताका कारण कितें जावं
0: ताका कारण आसा फादर मुळांत हो जागो बेन्नामाच्या बापाय सोसू बेन्नामाच्या बापायक त्या काळार कठीण कश्ट आनी आकांत आसल्या कारणान ताणें तसो जागो इंत्रामा आयकलो तेदळावो ल्हान भुरगो

0: प्रसारण 107.8 FM
1: भाइयों और बहनों, आज इधर लिंगुना पुण्य के मन में बहुत धूमधाम से होने वाला है

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।